0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर है या संयुक्त स्वामित्व है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लों पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लों वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल ट्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला ट्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी नो अब केंद्र से श्रोता मित्रों प्रस्तुत छे विचार बिंदु। आज नो विषय छे आयुष्य। प्रथम जितेश दवे।
3: विचार बिंदु मानस नु आयुष्य बहु बहुत सौ वर्ष नु तेमाय बाल्यकाल ने अने अति वृद्धावस्था ने बात करिए तो केटला वर्ष बाकी रहे काम करवा माटे आटला नाना जीवन मा अमूल्य वर्षो ने क्षुल्लक बाबतों मा अने ईर्षा द्वेष वगैरे अवगुणों मा वेड़फी शू काम नाखवा रस्ते जता गटर पण आवे अने बगीचोए आवे आपणे गटर ने छोड़ी अने बगीचा तरफ जईए छीए जीवन मा पण एवुं जो शू काम न करवुं फूल फूल वेणवा फूल फूल वेरवा अने कादव की जड़ थी दूर रहेवुं शू वेणवुं अने शाना थी दूर रहेवुं ए तो आपणा ज हाथनी बात छे विचार बिंदु
4: શું તમે જાણો છો કે સરકારશ્રીની વ્યાજની ભાવની દુકાનથી અંત્યોદય રાશન કાર્ડ ધારકો અને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબોને મળવાપાત્ર અનાજ બાબતે સંબંધિત જિલ્લા નિવાસી અને કલેક્ટરશ્રીને ફરિયાદ કરી શકાય છે હવે તો માય રાશન મોબાઈલ એપ દ્વારા રાશન કાર્ડને લગતી વિવિધ માહિતી તેમજ મેળવેલા અનાજના જથ્થાની રસીદ મેળવી શકાય છે તથા ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો ફોન નંબર 0792 32 58 490 શું તમે જાણો છો કે પીએમ પોષણ યોજના અંતર્ગત પ્રાથમિક શાળાના 6-14 વર્ષના બાળકોને મળતા આહાર બાબતે સંબંધિત જિલ્લાના નિવાસી અધિક કલેક્ટરશ્રીને તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાંથી 6 મહિનાથી 6 વર્ષ સુધીના બાળકોને સગર્ભા મહિલાઓને તથા ધાત્રી માતાઓને મળતા આહાર બાબતે કોઈ ફરિયાદ હોય તો સંબંધિત જિલ્લા પંચાયતના ફરિયાદ નિવારણ અધિકારીશ્રીને અરજી કે ફરિયાદ કરી શકાય છે અને જો આ અધિકારીઓના નિર્ણયથી સંતોષ ન થાય તો ગુજરાત રાજ્ય અન્ન આયોગ ગાંધીનગરને સીધી અરજી કે અપીલ કરી ન્યાય મેળવી શકો છો ફોન નંબર 0792 32 58 490
2: આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો પ્રસ્તુત છે ભક્તિ સંગીતનો કાર્યક્રમ અર્ચના પ્રથમ સાંભળીએ જીવીબેન કાપડીના કંચને

वातावरण गिरी स्थित विश्वविद्यालय डीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्लेटिनम जुबली इति महारजत जयंत्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्नाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय

0: वक्तुं शुभिकैकस्थितादेक विधायकानां समर्थनेन कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परन्तु सः राष्ट्रियायदिनीतौ स्वकीयाम् अनुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थ विभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तर पश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपय क्षेत्रेष् अतिताप घटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य उपान्त्य चक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं सार्ध सप्तवादने आरप्स्यते।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी

0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर है या संयुक्त स्वामित्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 की कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशूल शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Mr. Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a 3-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. The CBI has arrested Giribala Singh in the Tushar Sharma death case. Kiribala is Trisha's mother-in-law and a retired district and sessions judge. The arrest was made in Bhopal yesterday. Earlier, a CBI team questioned and searched Kiribala's home for nearly 7 hours, following which she was arrested. Union Home Minister Amit Shah held a meeting yesterday to review preparations for the Commonwealth Games and proposed Olympics to be hosted in Ahmedabad. Union Sports Minister Mansukh Mandaviya, Gujarat's Chief Minister Bhupendra Patel, Deputy Chief Minister Harsh Salvi, and senior officials were present at the meeting. In a social media post, Mr. Shah said, keeping in mind the proposed world-class sporting events in Ahmedabad, sporting facilities are being developed in accordance with global standards. Ahmedabad would be hosting the 2030 Commonwealth Games and has officially submitted a bid for the 2036 Olympics. The National Testing Agency, NTA, has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET-UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA said that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
2: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And in fact, that is something by which all international security

आकाशवाणी भुज समाचार कल्पना शर्मा जी छे। नमस्कार। केंद्रीय गृह ने सहकार मंत्री अमित शाह आज तेमना गुजरात प्रवास ना बीजा दिवसे कच्छनी आंतरराष्ट्रीय सरहद पर आवेला व्यूहात्मक रीते महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील हरामी मेला तथा क्रिक विस्तार की मुलाकात लेशे। आ दरमियान तेओ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा करवामां आवेली सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करशे और उच्च अधिकारी साथे सरहद सुरक्षा ने विविध मुद्दाओं पर चर्चा करशे। निर्धारित कार्यक्रम मुजब गृहमंत्री सवारे बॉर्डर आउटपोस्ट G7 नु उद्घाटन करशे और BSF ना जवानों साथे संवाद करशे। त्यारबाद तेओ ओपी टावर 1170 खाते आवेला कंट्रोल रूम नी मुलाकात लेशे और हरामी मेला विस्तार में जोरमार्ग द्वारा निरीक्षण करशे। जेटी पॉइंट खाते वृक्षारोपण कार्यक्रम पण योजाशे। बपोर बाद BSF सेक्टर मुख्यालय भूज खाते सरहद संबंधित मुद्दाओं पर गृहमंत्री अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक योजाशे। दरमियान तेओ गईकाले रात्रे जिला मथक भूज आवी पहोंच्या हता। तेमनी साथे नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी पण भूज आवी पहोंच्या हता। उल्लेखनीय छे कि अमित शाह छेल्ला 6 મહિનામાં બીજી વખત કચ્છની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે। ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં તેઓ BSFના રાષ્ટ્રીય સ્તરના રેઇઝિંગ ડે કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ભુજ આવ્યા હતા। દરમિયાન ગઈકાલે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે દેશમાં ગેરકાયદે રહેતા દરેક લોકોને ઓળખવા અને તેમને દેશ નિકાલ કરવા સરકારની દ્રઢ પ્રતિબદ્ધતાનો

विधायक सभा ने संबोधता तुम्हें आ बात कही। श्री शाह एक सप्ताह में सरहद सुरक्षा दल BSF ने 600 हेक्टर जमीन उपलब्ध करावा बदल पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशंसा करी। तेमज गई काले वीर सावरकर जयंती निमित्ते श्री शाह मातृभूमि प्रत्ये तेमना सर्वोच्च बलिदान समर्पण और अमूल्य योगदान ने पण याद कर्यु। त्यारबाद शाहीबाग खाते ओलिम्पिक्स कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड पोलिस फायर गेम्स की तैयारी अंगे समीक्षा बैठक में उपस्थित रहा। गृहमंत्री

0: Malice. Hello, my name is Shantam. I'm from the United States. But temperature 35 degrees Fahrenheit. Temperature no one can touch. Article Kutch, Banaskantha, Patel, Sabarkantha, Arvali, Mahisagar, Panchmahal, Dahod, Chota Udaipur, Narmada, and Tapi Jilana. Rajvit Sathe, Varsad, Nishadhita. And as I said, some other bulletin for a time, Namaskar.
1: आकाशवाणी समाचार सिंपल ठक्कर वांचे छे। सर्वप्रथम मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज थी कर्नाटक, गोवा और केरल में 3 दिवस की मुलाकाते। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश में भी गैरकायदेसर रहता लोगों सामने पगड़ा ने सरकार की प्रतिबद्धता को पुनरुच्चार करो। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात में कच्छ खाते सरहद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत

आतंकवाद सामे निर्णायक कार्यवाही करने लिए हाकल करी। अमेरिका ने ईरान वच्चे वधु आगामी साहिब दिवस में युद्ध विराम माटे समझूती। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स आज क्वालिफायर बे माटे टकराशे। समाचार विगतवार।

थे आप समर शो गीत सुधा। नौ आगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रायोजित NCERT। 9:32 मिनट है संत मणिमा नारायण स्वामी ना कंठे भजनो आप मारसो। 10 वागे सिंधी कार्यक्रम अमदावाद वडोदरा केंद्र थी रिले कराशे। साढ़े 10 वागे मनोरंजन में संगीतकार स्नेहल भटकर की पुण्यतिथि पर विशेष फिल्मी गीतों आप सांभरशो। 10:45 मिनटे लोक संगीत।

0: suryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए

दौरान कटक स्टडी की। आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, अगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ करके अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों को प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडम मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: जय मित्र को हम सबका साथ मिला। टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुँचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चिन्हित की जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लिकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिवाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज उप त्रिशा की सास गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से 1 दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने

0: फॉल्स इलाके में दिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वाले पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।

0: माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरामैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रामा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। मधुरा टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीति का निश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Home Minister Amit Shah says Centre's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister was addressing the function in Gandhinagar yesterday after inaugurating and laying foundation stone of development projects worth 340 crore rupees. He said the committee, headed by retired Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nawalekar, would submit its report within a year. Removing infiltrators from the country is a commitment of our government. Before this, Prime Minister Narendra Modi has decided to form a demographic change committee. This high-powered committee will examine the reason behind the demographic changes that have taken place across the country and look into the possible solutions. It will also consider why there is a need to bring any new law regarding this issue. Union Home Minister Amit Shah will visit the strategically significant and sensitive Harami Nala and creek areas along the international border in Kutch on the second day of his Gujarat tour today. During the visit, he will review the security arrangements made by the Border Security Force and discuss border security challenges with senior officials. The Home Minister will inaugurate Border Outpost G7 and interact with BSF personnel. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
3: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And in fact, that is something by which all international security experts must address this threat. It is an antithesis of everything that humanity stands for. India has been a victim of states that sponsored terrorism.
2: In a social media post, the Indian Embassy in Moscow said Mr. Doval participated in the first International Security Forum and the 14th meeting of High Representatives for Security Matters in Moscow.
4: On the sidelines of the forum, Mr. Bibhyal held a meeting with his Russian counterpart, Shoigu. During the meeting, the parties reviewed the current state of cooperation in the areas of defense, security, energy and trade economic ties. The BJP has appointed new party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. BJP National President Nitin Naveen appointed East Delhi MP and Union Minister Harsh Malhotra as the party's Delhi Unit President. Dr. Archana Gupta has been appointed as Haryana BJP Chief and Kewal Singh Dhillon will be the new President of Punjab BJP. Abhishek Debroy has been appointed as Tripura BJP President. With the appointments, Mr. Naveen has begun the process of selecting a new team of office bearers in states as well as the national level. In Kerala, Governor Rajendra Vishwanath Arlekar will address the Legislative Assembly today. This is the first policy address of the new UDF government in Kerala after 10 years. Following the governor's address today, the House will adjourn and reconvene on June the 1st for discussion on the motion of thanks to the governor's address. Prime Minister Narendra Modi met the representatives of the Tribal Security Forum in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi said, their dedication to the tribal community is truly commendable. He stated that during the meeting, meaningful discussions were held on various topics related to the development of tribal communities and their empowerment. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake a three-day visit to Karnataka, Goa and Kerala beginning today. The Vice President will attend the global celebration marking 45 years of the Art of Living Foundation in Bengaluru, Karnataka today. Later in the day, he will attend the Platinum Jubilee celebrations of University BDT College of Engineering at Davanagere, Karnataka. In Punjab, the counting of votes for the 102 civic bodies has started. The fate of 754 candidates from 1,897 wards will be decided today. Voting was held on May the 26th. These civic polls are being seen as a litmus test for all the major political parties in the state ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. In this multi-cornered contest, the ruling Aam Aadmi Party AAP, International Congress, Shiromani Akali Dal SAD and Bharatiya Janata Party BJP have fielded their candidates. The National Testing Agency NTA has released revised examination dates and admit cards for the Common University Entrance Test undergraduate CUET UG 2026 examinations for admission to programs across central and participating universities. The examinations will now be conducted on the 31st of this month and 6th and 7th of next month. The examination, which was scheduled for yesterday, was rescheduled due to Eid al-Adha. NTA says that admit cards for candidates appearing for the test on Sunday can be downloaded from the official website of NTA, cuet.nta.nic.in. The CBI has arrested Giribala Singh in the Trishan Sharma death case. More in this report.
5: Giribala is a retired judge and Trisha's mother-in-law. She was arrested yesterday in Bhopal after nearly 7 hours of questioning. She will be produced before the CBI court today. A day before the arrest, the Madhya Pradesh High Court cancelled her anticipatory bail. The court said that given the seriousness of the case and the evidence, relief could not be granted to her. Trisha died under suspicious circumstances on the night of May 12 in the Katara Hills area of Bhopal. Her in-laws called it a suicide, but her family has accused her husband and in-laws of murder. Abhinav Goyal, Akashwani, Bhopal.
4: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates from the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. World Meteorological Organization, WMO, has said that global temperatures are likely to hit near record highs over the next 5 years. According to a new WMO report, annual global mean near surface temperatures during 2026 to 2030 are predicted to range between 1.3 and 1.9 degrees Celsius above the 1850 to 1900 average. According to the report, there is an 86% chance that at least 1 year between 2026 and 2030 will surpass 2024 as the warmest year on record. There is an El Niño predicted for the end of 2026, which increases the chances of 2027 becoming the next record-breaking year. The United States, Mexico, and Canada issued a trilateral statement on public health travel measures for individuals arriving from African regions in the wake of the Ebola virus outbreak in parts of Africa. In a statement, these countries said that this coordinated approach aims to protect the citizens and millions of visitors, fans, athletes and tourists expected during the FIFA World Cup 2026 while maintaining travel and commerce across their borders. Meanwhile, Uganda has banned mass public gatherings in an effort to curb the spread of Ebola in the East African country. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has said that the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo was very complex, with conflict, insecurity, displacement, food shortages, and community mistrust complicating efforts to contain the disease. Speaking to reporters at the airport upon arriving in the DRC capital of Kinshasa, Tedros said, "It came to show affected communities that they're not alone and that the WHO was there to support the response." He said WHO teams are already working on the ground in Bunia, the capital of the Eastern Ituri province, adding that he would travel there today to assess the situation. Air India has extended suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. The airlines had earlier suspended flight operations on Tel Aviv-Delhi route till June end. A senior Air India official says that flights have been further suspended, keeping in mind the geopolitical situation in the region. In the wake of the West Asia conflict, airlines have been facing multiple headwinds, including costly fuel and airspace curbs, which pushed up their operational costs. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for thunderstorms and rainfall conditions today over parts of Delhi, Haryana.

0: क्वेश्चन पुछी सघे था अने हिकड़े शिक्षक जी हिकड़ी खासियत ही होनी खपे कि हिकड़ो बालक रहो कि पंजे साहिब थी पंजे शिक्षक थी ध्रिजो न खपे एंगे लगो खपे कि आऊं जो को क्वेश्चन पुछी रहो या कि मुझे मित्र के कि मुझे फ्रेंड सर्कल जे अंदर ही क्वेश्चन पुछी रहो या बस ईज मेंटालिटी जडे दरेक शिक्षक अपनाए के ने कि बालक जडे पाके क्वेश्चन पुछे तो ई पाके हैरान करेला ना बल्कि इन में जरा जो को इनजी जागृति हुई थी जिज्ञासा हुई थी इन जिज्ञासा के पूरी करेला करे ई क्वेश्चन पुछे तो हां ई होई सके केजे प्रश्न पुछे जो एकड़ो तरीको सलीको ई भले यूनिक होए बाकी इन चीज के ना नहरे जो है बल्कि क्वेश्चन करवाए इनके नहरे याने बच्चे जे प्रश्न के बाकी सातवना पूर्वक जो जवाब देनु खबे
1: बराबर आज जा शिक्षक जो को भणाए था अनमे क्लास में शिस्त के ए मारे सचवा जे न तो त अनजो कारण
0: अनजो बेन कारण ई है के मणिया पहले तो कंटेंट जरे पण आई क्लास के अंदर भणाए लावनो तो मणिया पहले आजो कंटेंट पावरफुल होनो खबे आज शिस्त का प्रश्न रहया लगभग कंटेंट अगर पांच बराबर हो तो ये सॉल्व थी वने बाड़क पाके सोने करे जरे पांचो कंटेंट बराबर हो अने इन कंटेंट के पास सारी रीते पिरसियूं तो 100% बाड़क पांजे क्लास के अंदर फोकस के साथ पाके सोने पण तो अने व्यवस्थित ध्यान पण ने तो असा जा प्रिंसिपल आई टांक साहब ये हमेशा असा के चैन था कि बच्चे मथे सारो प्रभाव वजेला करे आके मिणिया पहले आजो कंटेंट रियो ई पक्को करी नु पोंदो अने बियो मरबो कि बाड़क के जडे कंटेंट पिरसिए था तेर ई कंटेंट के केड़ी रीते पिरसी नु अगर ई कंटेंट केड़ी रीते पिरसी नु अने कंटेंट पावरफुल होनु ई बो चीजो अगर शिक्षक जे अंदर होए तो ई शिक्षक सफर शिक्षक है
1: बराबर अने शिक्षक जो सौथी महत्व जो जो को गुण चाणो ई करो होनु खपे आजी दृष्टि थी
0: मुझे दृष्टि थी मिणिया महत्व जो गुण जो को शिक्षक जे अंदर होनु खपे ये विनम्रता बालक के बालक जदे आ साथे गाल करे तो तेर इनके ई फील थियो खपे कि ना आऊं एकड़े मुझे फ्रेंड साथे मुझे घर जे एकड़े मेंबर साथे बात कर रहे हो यहां अमुक शिक्षक जने इनी के क्वेश्चन पूछे था विद्यार्थी जने क्वेश्चन पूछे था तर इनके डांट डफाड़ करीनी इनके वेड़ी नू या बहु सखत लहजे में जरा इनी के जवाब दीनू ई एकड़ी मानसिक स्थिति जे अंदर बालक के विजी छड़े तो के शिक्षक रे हमेशा कठोर होए था शिक्षक जी मानसिकता ही होनी खपे कि मुझो बालक मुखे गमे ही क्वेश्चन पूछी सके तो अने गमे अड़ो क्वेश्चन पूछी सके तो जरे ई मानसिकता एकड़े शिक्षक जे अंदर अची वने तो 100% जो को बालक जे अंदर जो को रहेली शक्ति हुई ए शक्ति के उजागर करे सके तो एकड़ो शिक्षक तरीके एकड़े ई रुआब न होनो खपे का आऊं वडा जो राजा आईया या आऊं वडा जो डिक्टेटर आईया ना बल्कि ई होनो खपे कई मुझा मित्र आई अने जे रीते मुझा मित्र मुखे क्वेश्चन पूछे था इनी जो जवाब मुखे जे रीते दीनो खपे एडी रीते मुझे विद्यार्थी के पण एडी रीते मुखे जवाब दीनो खपे ही महत्व जो मुझे ख्याल है गुण शिक्षक जे अंदर होनो खपे
1: आज जा शिक्षक स्कूल में भणाए करता ट्यूशन में वधारे सारो भणाईए एड़ो मुझे ख्याल आए ई मुझे अंगत मंतव्य आए आ वडो भद कोई शिक्षक थे वजह नथी पण आजो हन विषय में करो चाणो आए साहेब
0: बिल्कुल हाँ जी सच्ची गाल है कड़ा कड़ा केस थी था के जो को मेथड या सारी मेथड रहो ये स्कूल जे अंदर अप्लाई न करिए ट्यूशन जे अंदर अप्लाई करिए अने ई इनी जे सेवा प्रवृत्ति जो को शिक्षक जी है इनती ई गद्दारी करी रहा है कोला के जो को पण पांजी नौकरी रही या पांजो जो को पण स्वाभिमान है ई बाड़ के थ्रू जाए ई बाड़क पांजे शाला जे अंदर अची ना होए के ट्यूशन जे अंदर अची ना होए गमे डा अची ना होए पांजे भणाए जी मेथड रही ई बोय जगह ते एक समान होनी खपे अजे शिक्षक के एकड़ो विद्यार्थी रियो ई विद्यार्थी तरीके ना बल्कि पैसे जी नोट दिसा जी थी केतला छोकरा मोट अची वने तो मुझे घर जो जो को ऐसे एतला रुपया मुझे घर जे अंदर अची वने या मुके एतलो लाभ थी ई लाभ समाज जे अंदर किनाक ने किनाक नुकसान पहुंचाए समाज जे शैक्षणिक व्यवस्था मते नुकसान पहुंचाए इजे कारणे शिक्षक रिया ई शाला जे अंदर ओछो बराबर बनाइए था अने ट्यूशन जे अंदर खासो अड़ो बनाइए था तो एकड़ी ई मानसिकता ई एकड़े शिक्षक के समझनी पौंदी के विद्यार्थी आई तो शिक्षक है अने अगर विद्यार्थी नहीं वे तो शिक्षक नहीं वे अने विद्यार्थी पांके जना नु मिले था ई शाला अने शाला जे अंदर अगर पा बराबर नहीं बनायो तो पा पांजे सेवा प्रति गद्दारी करी रहायो अने पांके मालिक के जवाब दीनो है अने जो जवाब जरूर थी मालिक पावट गिंदो के आई एड़ी बेईमानी आजे सेवा जे अंदर करेला करया
1: सच्ची गाल है हेवर प्राइवेट स्कूल जो महत्व वध्यो आहे असी नंढा तॾहिं असीं पाण सरकारी स्कूल में भणिया आहियूं अने मूंखे यादि आहे त्यां सुधी असांजा शिक्षक रस्ते में कोई फंक्शन में कि कोई वॾे अहिड़े प्रसंग में मने त ॿियो मड़े कम छॾी अने शिक्षक खे पगे लॻे लाइ हिकिड़ो विद्यार्थी दौड़ी ने वेंदो हो त अॼु ई मानसिकता शिक्षक लाइ न आहे। कोई पण विद्यार्थी हैवराउ नथी ॾिसां कि शिक्षक खे अटले मान जी नज़र थी नेरे थो त हिन विषय में आंजो कुर चवणो आहे साहिब
0: जी। बिल्कुल सची ॻाल्हि आहे पल्लवी बेन हांजी। अहिड़ो धीरे धीरे दिन ब दिन हिकिड़े शिक्षक अने विद्यार्थी जो डिस्टेंस रहियो ई वधु में वधु क्रिएट थींदो वञे थो। जेको मान मर्यादा जेते समय जे अंदर हुई ई मान मर्यादा हाणे जे समय जे अंदर ऊची थींदी वञे थी। इन पाछा जा घणे मणे रीज़न ई इन में जानू मूंखे हिकिड़ो महत्व जो बाबत ई लॻे थी कि जॾहिं पाण पंहिंजा जेको वाली हुआ ऐं जेते समय भणिया हुआ तर छोकिरे खे शिक्षक जे साम्हूं चवंदा हुआ कि साहिब हीउ आंजो छोकिरो आहे, तव्हांखे जेको पाण हिन सां व्यवहार करणो आहे, हिनखे जेको पाण जहिड़ी ते पाण हिनखे ट्रीट करींदव तव्हांखे छूट आहे। अॼु जा वाली जेको रहिया ई शिक्षक खे धमकियूं ॾेई वञे रीत सर के मुंहिंजो छोकिरे खे हथ न लॻाइजा, मुंहिंजे छोकिरे पुठिया ऐं न पिया हुजा, अने हिकिड़ी ध्रुणा शिक्षक प्रति उत्पन्न थी वई आहे। एटले हद सूंदी कि हाणे शिक्षक मथे हथ पण उपारे विझनि था। ई पाण खे सम्झो खपे, पर हिकिड़ी चीज़ त ई आहे कि अगरि शिक्षक हिन खे अॼु मारींदो त काली पोलिस जे मार कना नूं बची सघंदो।
1: सची ॻाल्हि आहे, असांजो त ई स्लोगन हो के सोटी वागे सम सम विद्या आवे चम चम, अटले सोटी न वजे त विद्या न अचे। पाण हजाणे सोटी के ई लोको हिंसा में घणी घणाया त कदाच अंजो ई पण हिकिड़ो कारण होई सके थो।
0: बिल्कुल, अने हेवर केरल जे हाईकोर्ट हिकिड़ो टिप्पणी करे अने इन टिप्पणी जे अंदर हिकिड़ो केस वियो हो जेको विद्यार्थी तरफ थी करेल हो शिक्षक मथे, अने तेरी कोर्ट आखो केस नेरे अने टिप्पणी करे कि जेको अगर शिक्षण के फैलाइणो होए अने बालक जे अंदर कि सुधारो खपदो होए त शिक्षक वटि सोटी होणी ज़रूरी है। अने हिकिड़ी सोटी जो मतलब ई न कि छोकिरे प्रत्ये इनखे घृणा आहे या इनखे नफ़रत आहे। जहिड़ी ते हिकिड़ो वाली हिकिड़ो पिता हिकिड़ो माउ पंहिंजे बच्चे खे सुधारे लाइ करे केॾाक ने केॾाक कि सख़्त कदम उपाड़ींदी वे, बसि ई सख़्त कदम हिकिड़ो शिक्षक उपाड़े थो।
1: सची ॻाल्हि आहे त सौथी पहिलो गुरु पंहिंजी माउ अने इन पुठिया जेको पंहिंजो गुरु वेठो हुई शिक्षक अॼु वेठो। त बहु सरस ॻाल्हि कयाई सिकंदर भाउ अने असांजे श्रोता खे बहु सरस समझाया कि हिकिड़ो शिक्षक कहिड़ो हुअणु खपे अने हिकिड़ो विद्यार्थी अने अञा वाली पण कहिड़ी रीते शिक्षक खे सपोर्ट करिया खपे के जेको पहिला जी जेको शिक्षण पद्धति हुई पाछी शिक्षण पद्धति अची वञे त प्राइवेट ट्यूशन पण बंदि थी वञे अने छोकिरा पण पहिला करता पण वधारे होशियार थी सघे। त आभार सिकंदर भाउ जो।
0: आभार पल्लवी बेन आजो, आप एडा मुके बुलाव्या, मान पानी देना, ते बदल आप जो खूब खूब आभार।
1: आकाशवाणी जो ही भुज केंद्र वो अने आई सोया ते ही कच्ची कार्यक्रम हलो करियो गाल। तो आऊ पल्लवी हणे रजा गंदी से मुझे मनी श्रोता भाई बहने के मुझा जजा करे ने राम राम राम राम राम राम।

0: श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंडियाल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
0: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
0: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही

0: सुगंधित फूल है। लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी ये बात तो है।
1: श्रोताओं, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से एक नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातःकाल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल,
0: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
0: जी
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेले,
2: कभी कबड्डी खो खो खेले,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली

0: होलिया भी मजा दिलाता,
1: सजो होलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत।

0: निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निसंदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट बुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: तू पीछे जा, पीछे जा। और सीधा सेंटर में ओके।
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूँ।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में

0: अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था, लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोभा टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद ये अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: आदर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जवाहर टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है और असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए। सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह नंबर 1 और यह नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायु सेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहें। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली। आयो गोरखाली। जय महाकाली। आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली। आयो महाकाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड

0: ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए ये हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर

0: किसी को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिवाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वनियांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज थी कर्नाटक गोवा अने केरल नी 3 दिवस नी मुलाकाते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवी दिल्ली में आदिवासी सुरक्षा मंच ना प्रतिनिधियों साथे मुलाकात करी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ रविवारे 31 मे ना रोज आकाशवाणी पर प्रसारित थनारा मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश लोको समक्ष तेमना विचारों रजू करशे। केन्द्रीय गृह अने सहकार मंत्री अमित शाह आज कच्छ खाते सरहद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करशे। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह देशमांथी गैरकायदेसर रहता लोको सामे पगलानी सरकारनी प्रतिबद्धतानो पुनरोच्चार कर्यो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाले आतंकवाद सामे निर्णायक कार्यवाही करवानी हकल करी। केन्द्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेन्द्र प्रधाने सीबीएसई धोरण 12 परीक्षाओना मूल्यांकन अने परिणाम पछीनी प्रक्रियाओ संबंधित मुद्दाओनी समीक्षा माटे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बोलावी। पश्चिम एशियामां सतत भौगोलिक राजकीय अनिश्चितताओ वच्चे एर इंडियाए इजरायल माटेनी फ्लाइट्स जुलाई अंत सुधी स्थगित करी। अमेरिका अने ईरान वच्चे वधु आगामी 60 दिवसना युद्ध विरामना माटे समझूती। कृषि विभाग हस्तकनी तमाम कचेरीओ निगमो तेमज शैक्षणिक संस्थाओमां सोलार रूफटॉप लगाववानो आदेश। राज्यमां इबोला वायरस सामे तंत्र संपूर्ण सज्ज। गईकाले वडोदरामां नोंधायेलो इबोला वायरसनो शंकास्पद केस नेगेटिव। पश्चिम एशिया संघर्ष वच्चे एलपीजी साथे वधु एक जहाज गुजरातना दरिया किनारे पहोंच्यू। गांधीधाम खाते 150 लोको एंजीनना मेंटेनन्सनी व्यवस्था उभी कराशे। अदाणी संचालित गेम्स जीके जनरल होस्पिटलना आहार विभाग द्वारा भूज स्थित बीएसएफनी 68 बटालियन केम्पसमां पौष्टिक आहार अने मिलेट्सना उपयोग विषय वार्तालापनुं आयोजन करायुं। नेशनल एसोसिएशन फॉर ध ब्लाइंड कच्छ

सीपी राधाकृष्णन आज की कर्नाटक गोवा और केरल की 3 दिवस की मुलाकात है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में आदिवासी सुरक्षा मंच प्रतिनिधिओ साथ मुलाकात करी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार 31 मई रोज आकाशवाणी पर प्रसारित थनार मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश केन्द्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह आज कच्छ खाते सरहद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर पुनरुच्चार कर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आतंकवाद सामे निर्णायक कार्यवाही करने हांकल करी। तीसा शर्मा मृत्यु केस में सीबीआई तेना सासू ने निवृत्त जज गिरीबाला सिंह ने धरपकड़ करी। केन्द्र शिक्षण मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सीबीएसई धोरण 12 की परीक्षाओं मूल्यांकन और परिणाम पछी की प्रक्रियाओं संबंधित मुद्दाओं की समीक्षा उच्चस्तरीय बैठक बोलावी। भाजपा बदलावाना 76 वर्षीय भूतपूर्व धारासभ्य केवल सिंह ढिलोल ने पार्टी पंजाब एकम वड़ा तरीके नियुक्त कर। पश्चिम एशिया में सतत भौगोलिक राजकीय अनिश्चितताओं वच्चे एयर इंडिया इजरायल माटेनी फ्लाइट जुलाई अंत सुधी स्थगित करी। अमेरिका ने ईरान वच्चे वधु आगामी 60 दिवस युद्ध विराम माटे समझूती। अमेरिका ने डलास में एक एपार्टमेंट बिल्डिंग में थे प्रचंड विस्फोट और आग में 3 लोगों की मौत। कृषि विभाग हस्तक ने तमाम कचेरीओ निगमों शैक्षणिक संस्थाओं में सोलर रूफटॉप लगावा आदेश। राज्य में इबोला वायरस ने तंत्र संपूर्ण सज्ज। गईकाले वडोदरा में नोंधायेलो इबोला वायरस नो शंकास्पद केस नेगेटिव। आगामी 4 दिवस राज्य में विविध विस्तारों में वरसाद की आगाही। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स और राजस्थान रॉयल्स वच्चे क्वालिफायर 2 मुकाबलो। हवे पछी आप 11 वाग्ये मुख्य समाचार सांभळी शकशो। नमस्कार।

न्यूज हेडलाइंस का पूरा दोस्तों अवां जो स्वागत है सिंधी कार्यक्रम सुरहान में। सुरहान के अगे की कड़ी में दोस्तों अचो सब का पैरी बुधू असो जीवन ए एआई

કે સમજી ન શકે તો એક મશીન માજ પર દોસ્તન જો પંજાય પર યા રસ્તે નાતન જી મિલન ન દે શકે તો એ અગર માનું અને મશીન ને ઉલજી પવંદો તો હવે જેમેટ મેટ રસ્તે ખા પર્યા થી વેંદો દોસ્તો વિતે એક સવાલ તો પેદા થે કે આખર પાણ કે છા કરે ખપે એ કોઈ દુશ્મન તો ના હે ઉમકે માત્ર એક સાધન જી તરહ ઇસ્તેમાલ કરે ખપે અગર હમે જો ઇસ્તેમાલ સહી તરીકે સા કરના સે તો મને વિશ્વાસ આયે કે હમેશા પેલી તરક્કી હી થિંદી પર અગર પાણ સદી તરહ સા મશીન તો હી નિવાર થી વેંદા સે તો એ લઈ પંજે લઈ નુકસાનકારક સાબિત થી સગે તો પાણ સબન કે હિતે કુછ ગાલન જો ધ્યાન જરૂર રખા ખપે ताकि हम डिजिटल युग में इन साधनों जो इस्तेमाल कंदे कंदे पर हम जा गुलाम न थी बनो इन सभी साधनों जो इस्तेमाल जीवन के सहलो करने लाए थे हुआ है इजी लाइफ थे इन नेक इरादे खा थे हुआ है और पर मैं इन जो इस्तेमाल कंदे कंदे एरे चक्रव्यू में फासन दा गया हूं ए दियो दे हम जा गुलाम थे दा गया हूं अब जो कुछ कलाकन भी इन तकनीकन यत्न जी सिवाय हली न था सबो इन करे તકનીકન જો ઇસ્તેમાલ કંદે કંદે મશીનન ખા ગડે રવંદે ગાંદે માનો દે મશીન જેરો બંજી વો હે ધીરે ધીરે ઓ બન જા દુખ દર્દ તકલીફુ પરેશાનન કે સમજા મહેસૂસ કરા યે જજ્બાદ ખતમ કર થિંદા વનન માનો કંદે સંસ્કારન કે વેલ્યુસ કે ભજે લગો આહે અજ માનો એ ડિજિટલ જગ જે કારણ હર ખેતન મે કામયાબી પાય તો अच्छा बैरी तरक्की ए अंदरूनी तरक्की गड़ गड़ एक ही दिशा में हलन पे अगर हिन जो जवाब हा आए तो अज जो मानू अंदरूनी तौर ते कमजोर निमाणो उदास दुखी छो आए छो अंदर का पूरी तरीके से खाली थी वो आए मैं जी चमक दमक दिसी ये हिक बे जी पोस्ट दिसी जिंदगी दादी रंगीन के लगे थी पर हकीकत में हकीकत में तो हर एक माण्हू अंदर खां कुछ न कुछ तूफान जो सामनो करे पियो हू कॾहिं बयां करे सघे थो त कॾहिं हुन तूफान खे अकेली पंहिंजे अंदर समाए छॾंदो आहे दोस्तो मूंखे हिते हिक नंढी आखाणी यादि पई अचे नीरज हिकु वॾी कंपनी में कमु कंदो हो हुन जी सॼी ज़िंदगी तकनीकनि जे अधीन थी चुकी हुई सुबुह जो उथण खां वठी राति जो सुम्हण ताईं हू हर कमु एआई जी मदद सां ई कंदो हो एआई हुन जा ईमेल लिखंदो मीटिंग्स फिक्स कंदो रिपोर्ट्स ठाहे एतिरे ताईं की पंहिंजे घर परिवार जे माण्हुनि लाइ नियापा बि एआई खां ई तयार कंदो हो ऐं नीरज खे लॻण लॻो सभु कम एआई करे सघे थो त हाणे माण्हुनि जी ज़रूरत ई छा आहे हिकु ॾींहुं हुन जी माउ हुन खे चई पुट केतिरा ॾींहं थिया आहिनि पाण गॾिजी वेठा ई न आहियूं दिल भरे हिक ॿिए खां ॻाल्हायो ई कोन्हे अच पंहिंजी माउ खां गॾु अची वई त ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं नीरज उछड़े जवाब ॾिनो मां तोखे ख़बर कोन्हे मां केतिरो बिज़ी आहियां मूंखे ॾाढो कमु आहियां मां पोइ थो ॻाल्हायां ऐं तव्हांजे लाइ मां ए आई स्पीकर त लॻाए छॾियो आहे तव्हां हुन सां ई ॻाल्हायो मां मुस्कुराए लॻी लेकिन हुन जी अखियुनि में आंसू अची विया कुझु महीननि खां पोइ नीरज जी कंपनी में हिकु ॾाढी वॾी तकलीफ़ आई सिस्टम हैक थी वियो ऐं सभु ए आई टूल्स बंदि थी विया कंपनी जा कम रुकजी विया सभु माण्हू परेशान थी विया छोकी उहे ख़ुदि फ़ैसिला वठणु लॻभॻि भुलिजी चुकिया हुआ ओॾी महिल ई नीरज खे अस्पताल मां फोन थो अचे की नीरज जी माउ जी तबियत अचानक सां ख़राब थी वई आहे इन करे हुन खे आई सी यू में भर्ती कयो वियो आहे नीरज फटाफट हॉस्पिटल पहुचे थो उते ॾिसे थो त माउ जे हथ में नीरज जे नंढपण जी तस्वीर हुई माउ हुन खे धीरे सां चए थी की मशीनूं सवलायूं ॾेई सघंदियूं आहिनि पर पंहिंजो सम्झी हथ पकड़े रिश्तनि जो कुर्ब न ॾेई सघंदियूं तकनीकूं जीवन खे आसान बणाए सघंदियूं आहिनि पर परिवार जे माण्हुनि जी जॻहि न खणी सघंदियूं आहिनि हुन खां पोइ नीरज जूं अखियूं खुलियूं नीरज तकनीकुनि जो इस्तेमाल जारी रखियो पर मोथाज न थियो राजा बण जे इस्तेमाल कंदो हो ऐं मशीनुनि जी ग़ुलामी मां मुक्त थी वियो दोस्तो अगर एआई जे दौर में माण्हू खे माण्हू थी रहणो आहे त तकनीकनि खां गॾु गॾु मेडिटेशन आत्मचिंतन पंहिंजे परिवार लाइ सुठो समय कढण ऐं इंसानी मूलनि खे अहमियत ॾियणु ॾाढो ज़रूरी आहे हिन में पहिरीं पॉइंट आहे मेडिटेशन मेडिटेशन करण लाइ कोई पंहिंजो घर बार नौकरी धंधो या पंहिंजे ॿार बचनि खे छॾण जंगल में पहाड़नि ते वञी तपस्या करणु न आहे ऐं पंहिंजे घर गृहस्थ में रही पंहिंजी ज़िमेदारी निभाईंदे

0: मन बुद्धि संस्कारन जो ध्यान रखना है। अॼु माण्हुनि जो मन हर घड़ी बिज़ी आहे, नेगेटिव थॉट्स वधीक था हलनि, चिंता डप बेचैनी फिक्र खां घिरियो पियो आहे। पर हू कम जो प्रेशर हुजे या मोबाइल सोशल मीडिया या हिकु डुक डोड़ वारो जीवन जे करे घणेई कारण आहिनि अॼु मन जी परेशानियुनि जा। AI ऐं तकनीक पंहिंजे जीवन खे तेज़ त करे छॾियो आहे पर मन खे शांत स्थिर न करे सघियो आहे। ऐं हिन करे मेडिटेशन पाण खे कुझु समय लाइ ॿाहिरि जी दुनिया खां मन हटाए करे अंदर जी यात्रा करण जो नालो आहे। जीअं जीअं हिन जो अभ्यास वधंदो तीअं तीअं पंहिंजो मन शांत स्थिर पॉज़िटिविटी सां भरपूर थी वेंदो आहे। मेडिटेशन जो रोज़ाने अभ्यास सां पंहिंजे मन जो तनाव डिप्रेशन टेंशन घटिजण लॻंदो आहे। गुस्सो चिंता डप धीरे धीरे कंट्रोल में अचण लॻंदा आहियूं। जीवन जो सही फैसलो वठण लाइ हू बल मिलंदो आहे। धीरे धीरे ज़िंदगी जीअण जा रस्ता आसान बणजण लॻंदा आहिनि ऐं ज़िंदगी खुशहाल थी वेंदी आहे, छोकी माण्हू खुद पाण खे मशीन खां अलॻि हिकु डिवाइन एनर्जी समझण लॻंदो आहे। सेकेंड पॉइंट आहे सेल्फ रिफ्लेक्शन। अॼु माण्हू सॼो ॾींहुं पंहिंजूं पोस्टूं ख़बरूं इंफॉर्मेशन में खपजी वियो आहे। पंहिंजूं पोस्ट फोटोस वीडियोस ॾिसी साड़ पचर करणु चटाभेटी करणु टीका टिपणी करणु हिन में ई रचियो पियो आहे ऐं खुद जे बारे में सोचण लाइ टाइम ई नथो कढी सघे। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो मतिलबु आहे पंहिंजे वीचारनि पंहिंजे संस्कारनि पंहिंजी आदतुनि ऐं पंहिंजे व्यवहार खे समझणो ऐं जीवन में हुन खे सही दिशा ॾियणी। जॾहिं माण्हू खुद खां सवाल कंदो आहे न कि मां केरु आहियां, मूंखे जीवन जो असल मक़सद छा आहे, छा मुंहिंजो जीवन सिर्फ़ कम ऐं स्क्रीन सां ई सीमित आहे या हिन जे अलावा बि मुंहिंजे जीवन जो कोई उद्देश्य आहे। सेल्फ रिफ्लेक्शन खां माण्हू जे अंदर जागरूकता ईंदी आहे जंहिं खां जीवन में बराबरी ईंदी आहे। मशीनूं पाण खे स्मार्ट ठाहे सघंदियूं आहिनि स्पिरिचुअल में। दोस्तो, टी पॉइंट ते पंहिंजे परिवार लाइ, मिट माइटनि लाइ, ॿार बच्चनि लाइ समय ज़रूरु कढूं। क्वालिटी टाइम हुननि खां गॾु स्पेंड कयूं। हिक ॿिए जो हाल चाल वठूं ऐं ॾियूं। गॾु मिली ॾिणु मल्हायूं, खाधो खाऊं जंहिं खां आपसी प्यार ऐं सपोर्ट वधे। तकनीकुनि माण्हुनि खे ऑनलाइन त जोड़े छॾियो आहे पर दिल जी दूरी वधाए छॾी आहे। अॼु घणेई दफ़ा हिकु घर में चार माण्हू गॾु ते वेठा हूंदा आहिनि पर चारई पंहिंजे पंहिंजे मोबाइल में ई लॻिया पिया हूंदा आहिनि। परिवार जो मतिलबु सिर्फ़ गॾु रहण न आहे दोस्तो, पर भावनाउनि सां जुड़ियल ऐं पंहिंजे पन जो नालो आहे। इंसानी क़दर जी ॻाल्हि कयूं त अॼु जो माण्हू किथे न किथे पंहिंजे कोर वैल्यूस खे आण ॾिठो पियो करे। इन करे हुन जी ॿाहिरी तौर ते तरक़ी त थिए पई पर अंदरां हू खाली थी वियो आहे। प्रेम करुणा दया धीरज इज़त मान सम्मान सहन करण जी शक्ति ईमानदारी हे सभु माण्हुनि जा असल गुण आहिनि, लेकिन हू अॼु AI ऐं डिजिटल युग जे करे हुन जे चकर में सभु भुलजंदो पियो वञे। इन करे दोस्तो, AI वटि ॾाढो ज्ञान आहे पर समुझ न आहे, जज़्बात न आहिनि ऐं हिन करे ई पाण सभिनि खे मानव जगत में रही मानव हित ऐं कल्याण जे लाइ AI जो सुठे तरीक़े सां इस्तेमालु त करणो आहे पर गॾु गॾु पंहिंजे मन बुद्धि संस्कारनि गुणनि ऐं शक्तियुनि जो बि हेतिरो ई ध्यानु रखणो आहे।
1: अॼु असां सुरहाण कार्यक्रम में आकाशवाणीअ जे 90 सालनि जी शानदार यात्रा जा अहसास उदमा ऐं यादगिरियूं खणी अव्हां जे अॻियां हाज़िर आहियूं। अॼु असांजे स्टूडियो में नींड ॾिनी आहे वर्ख नाटक कलाकार श्री वासदेव माखीजा जी खे। नमस्ते वासदेव माखीजा जी।
2: नमस्ते।
1: जीअं त 90 सालनि जी आकाशवाणीअ जी हीअ शानदार यात्रा रही आहे, 8 जून 1936 आकाशवाणीअ जी शुरूआत थी, तव्हां आकाशवाणीअ सां कहिड़े साल में ऐं कीअं जुड़िया?
2: सुनीता जी, आकाशवाणी जे 90 सालनि जो अधु कजे, 45 साल मूंखे बि आकाशवाणी सां जुड़े थी विया। 1980 जे आसपास मां जॾहिं पहिरियों सिंधी ड्रामा कयो हो त इन में कुमार नगर में मुंहिंजो दोस्त हूंदो हो चांद किशन, उन जे माध्यम सां ख़बर पई त आकाशवाणीअ ते ऑडिशन थियण वारी आहे।
1: अच्छा।
2: त मूं

0: शायदि मतलब ऑडिशन छा थींदी आहे कहिड़े नमूने थींदी आहे, त हुन मूंखे सुठे नमूने प्रिपरेशन कराई ऐं ख़ुशनसीबी मुंहिंजी अहिड़ी रही जो पहिरियनि उन टाइम ते 28 ॼणनि ऑडिशन ॾिनी ऐं उन मां मां हिकिड़ो ई पास
1: थियुसि।
0: हा ऐं चवंदा आहिनि न भई काम कयो उनजो फल त सुठो मिलंदो आहे, छो जो मूंखे चांद किशन ॾाढी सुठे नमूने प्रिपरेशन कराई। वाक्य जी रचना, उनजो माना क्लैरिटी, शब्द जो चङी तरह सां चवणु ऐं हिकु हिकु शब्द कीअं क्लियर ॿुधंदड़नि जे कन ते पवे, अहिड़े नमूने जी हुन सुठी प्रिपरेशन कराइनि। ऐं जीअं त आकाशवाणीअ ते परे खां कीअं ॻाल्हाइबो आहे, ओड़े खां कीअं ॻाल्हाइबो आहे, विस्फरिंग कीअं थींदो आहे, इन सभु जो हुन मूंखे ज्ञान ॾिनो। ऐं जीअं ई मां आकाशवाणी ते ऑडिशन ॾिनी त ख़ुशनसीबी मुंहिंजी आहे जो 28 मां पहिरियों माण्हू अकेलो ॿाहिरि निकितुमि।
1: ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे ऐं सच में फ़ख़ुर जी ॻाल्हि आहे। तव्हांजो चाह बि इन में एतिरो वधीक हूंदो जो तव्हां एॾी शिद्दत सां उन ॻाल्हि जे पोयां या तयारीअ जे पोयां लॻी आहे ऐं तव्हां कामयाब बि थिया। अच्छा, तव्हां इहो ॿुधाईंदा त तव्हां आकाशवाणीअ सां जुड़िया हिकु नाटक कलाकार जे रूप में, ऐं तव्हां इन दौरान जीअं तव्हां ॿुधाए चुका आहियो की 45 सालनि जो तव्हांजो बि लाॻापो रहियो आहे आकाशवाणी सां, त तव्हां आण घणा नाटक कया हूंदा। उन्हनि सभिनी नाटकनि मां तव्हां के अहिड़ा यादगार नाटक जिन में जेके किरदार तव्हांखे करण में तमामु घणो मज़ो आयो हुजे, कुझु सिखण लाइ मिलियो हुजे, त उहे कुझु उन ते रोशनी विझंदा।
0: समता जी, हिते मूं अलॻि अलॻि प्रकार जा कैरेक्टर कया, जीअं त मुंहिंजो वॉइस बेस हुजण जे करे मूंखे ख़ासि त अहिड़े प्रकार जा रोल मिलंदा, जीअं मुखीअ जो, जमादार जो, इंस्पेक्टर वग़ैरह जो। पर उन्हनि सभिनी मां अहमदाबाद आकाशवाणी तां हिकड़ी सीरियल हली, साइंस सीरियल, जंहिंजा 14 एपिसोड आहे, जंहिंमें पत्नी ऐं पति ॿ घर जा हिकिड़ा सदस्य आहिनि, जंहिंजा ॿार हुन खां क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन पुछनि था, त ॿारनि सां कमु करण महिल ॿारनि जी क्यूरियोसिटीअ खे संतोष ॾींदड़ 14 एपिसोडनि जो जेको साइंस सीरियल हुई, उन में कमु कंदे मूंखे काफ़ी आनंद आयो। ॿारनि सां कहिड़े नमूने उन्हनि खे रिझाए उन्हनि जे सुवालनि जा जवाब ॾिजनि, उहो कमु ॾाढो सुठो लॻो, जंहिंमें पूनम रूपाणी मूंसां गॾु हुआ ऐं साइंस सीरियल हरीश ककवाणी जी डायरेक्टर आहे उन साइंस सीरियल जा।
1: जी, तव्हां 45 साल आकाशवाणीअ ते अलॻि अलॻि किरदार निभाया, ठीकु है, त उन दौरान तव्हां केतिरनि कलाकारनि सां बि लाॻापे में आया हूंदा ऐं गॾो गॾु तव्हांखे केतिरनि ई हिदायतकारनि बि हिदायत ॾिनी हूंदी कोई किरदार खे हीअं निभाइण लाइ, हूअं निभाइण लाइ, त इन्हनि सां लय विचार में अचण सां तव्हां उन्हनि कलाकारनि या जेके हिदायतकार हुआ उन्हनि खां कुझु सिखिया या तव्हां जे ज़हन ते उन्हनि कहिड़ी छाप छॾी ऐं कीअं?
0: ॾाढो सुठो क्वेश्चन आहे सुनीता जी। आकाशवाणीअ ते मूं 45 सालनि दरमियान आकाशवाणीअ ते जेके बि सिंधी सेक्शन में डायरेक्टर हुआ, चंद्रसेन नवाणी, मिस्टर पुरसवाणी, आशा मंशारमाणी, हरीश ककवाणी जी, उन खां सवाइ ॿाहिरां डायरेक्टर जीअं डॉक्टर प्रेम प्रकाश, जेठो लालवाणी, तंहिंखां पोइ विक्रम शाहाणी, इन्हनि सभिनी जा नाटक लिखियल ईंदा हुआ, त डायरेक्शन जो जुमो बि कॾहिं कॾहिं उन्हनि खे ॾिनो वेंदो हो, त उन्हनि सां मूं काफ़ी सुठे नमूने कमु कयो। उन में विशेष रूप में मूंखे मिस्टर पुरसवाणी, ककवाणी ऐं आशा जी सां काफ़ी आनंद आयो, घणो कुझु उन्हनि मां सिखण जो मिलियो। उन्हनि सां गॾो गॾु जेके कलाकार हुआ, सुठे में सुठो अनुभव रहियो चिमन शर्मा सां, जेके हिंदी में बि नाटक कंदा हुआ, सिंधीअ में बि नाटक कंदा हुआ, चंद्र चिमन शर्मा, तंहिंखां पोइ उत्तम हिंगोराणी, चांद किशन, विक्रम शाहाणी, तंहिंखां पोइ जगदीश शहजादपुरी हो, तंहिंखां पोइ मीना शहजादपुरी, तंहिंखां पोइ रुकमा, हिकु रुकमा करे लेडीस हुई जंहिंजो नालो मूंखे सरल यादि कान्हे का, चंदनानी, ऐं तंहिंखां पोइ मयूरी राघाणी, तंहिंखां पोइ सावनाणी, तंहिंखां पोइ अहिड़ा घणेई कलाकार हुआ, ॾाढा कलाकार मुंहिंजे महोत्सव में आया, इन में केॾी वासवाणी जंहिंखे कला दा वास करे पुरसवाणी साहिबु चवंदा हुआ, छो जो हुनजो आवाज़ ओमपुरीअ वांगुरु भारी हुजणु।

0: जेकर हुन खे चवंदा त भई कंहिंजे गले में त कला था वास आहे, कंहिंजी वासवाणी खे कला था वास करे छॾियो। तुलसी रचनाणी अहिड़ा घणेई कलाकार मूंसां गॾु ड्रामा जे दरमियान कमु कयो ऐं काफ़ी कुझु सीनियर कलाकारनि मां मूंखे ॼाण जो बि मिलियो।
1: हिकु काई ॻाल्हि ईअं थींदो आहे की असां जॾहिं पंहिंजा को आर्टिस्ट हूंदा आहिनि उन्हनि मां बि सिखंदा आहियूं कुझु न कुझु, त अहिड़ी काई ॻाल्हि जेका तव्हांखे तव्हांजे दिल खे छुई वई हुजे या उन्हनि जे अदाकारीअ जो नमूनो तव्हांखे किथे न किथे कुझु सेखारे वियो हुजे?
0: हा, चिमन शर्मा अहिड़ा आर्टिस्ट हूंदा हुआ जंहिं मां घणो कुझु सिखण न मिलंदो हो। उन चिमन शर्मा मां बिल्कुलु नेचुरल कीअं कजे, किथे टैक खपे, किथे खिल खपे, किथे प्रश्नार्थ खपे, अहिड़े नमूने जी जेका ॼाण सुञाणप हुई हिकिड़ो चिमन शर्मा में हुई ऐं डायरेक्टर जे रूप में त डॉक्टर प्रेम प्रकाश उन में माना सर्वोपरि आहे, त उन्हनि जे माध्यम सां बि घणो कुझु ॼाणण जो मौको मिलियो। ऐं एतिरी क्यूरियोसिटी में माना इहे घर करे वई आकाशवाणी ते ईंदे ईंदे त मूं हिन में वधीक कीअं कमु कजे, वधीक कीअं महारत हासिल कजे, इन जे लाइ मूं ड्रामा डिप्लोमा जो कोर्स बि कयो।
1: अच्छा, सही ॻाल्हि आहे। इहो तव्हां पहिरीं बि ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि में ॿुधायो की अञा ताईं बि तव्हांखे सिखण जो एतिरो ई शौक़ु रहियो आहे जो हिन उमिरि में बि तव्हां डिप्लोमा कयो ड्रामा में। असां आकाशवाणीअ जा 9 साल मल्हाए रहिया आहियूं। 9 सालनि जी हिन यात्रा में तव्हां जीअं 45 सालनि खां जुड़ियल आहियो, त हिकु अहिड़ो कोई किरदार जेको तव्हांखे अञा ताईं बि ईअं लॻे की इहो मां कयो यादगार रहियो, या अहिड़ो कोई किरदार जेको तव्हांजे साम्हूं निभाइजी रहियो हो ऐं तव्हांखे दिलि थी त अहिड़ो किरदार जेकर मां बि निभायां हा?
0: हिकिड़े नाटक में अगरबतियुनि विकिरण वारे जो रोल हो, जेको मंदर जे ॿाहिरां अगरबती विकिणे थो ऐं मंदरनि जे अंदर थींदड़ सुसपुस या उणिवीह वीहनि ॻाल्हियुनि जी पूरे पूरो ध्यानु रखंदड़ जंहिंखे चइजे खणी जासूस, अहिड़े नमूने जो किरदार मूं निभायो हो ऐं उन में काफ़ी आनंद आयो हो। सुठे नमूने जो उहो किरदार हो जंहिंमें हरेई नमूने जा जंहिंखे चइजनि रस अची पिया वञनि, जंहिंमें खिल बि हुई, सटायर बि हो ऐं अजब बि हो त मुश्किल बि हुई, घणा कुझु रस उन दरमियान उन में उन किरदार में अची पिया वञनि।
1: जीअं तव्हां नाटक कलाकार जे रूप में ही सभु ॻाल्हियूं असां सां वंडियूं, कहिड़े नमूने जी अनुभूति तव्हांखे अञा ताईं जे वक़्त ताईं थी रही आहे आकाशवाणी सां जुड़ियल हुअण करे?
0: सुनीता जी, मां जॾहिं ईंदो हुयमि तॾहिं असांजा जेके डायरेक्टर मेन हूंदा हुआ आशा जी ऐं मिस्टर पुरसवाणी, असां पहिरीं पहिरीं हिते ईंदासीं त टे टे ॾींहं लॻातार
1: ईंदासीं।
0: ॿ ॾींहं असांजी रिहर्सल हलंदियूं, टे ॾींहं रिकॉर्डिंग थींदी हुई। टिनि ॾींहंनि में आत्मीयता हिकु हिकु कलाकार सां ऐं हिकु हिकु डायरेक्टर सां, आत्मीयता प्लस में उन किरदार खे सम्झण जो जेको मौको मिलंदो हो न, सो अॼु जी भॼ भॼाए जी ज़िंदगीअ में कोन्हे को। उहे ॾींहं जेके आहिनि जीअं चवंदा आहिनि न भई पुराणा ॾींहं यादि कजे, त पुराणनि ॾींहंनि में उहे ॾींहं अति जेके चइजे
1: ख़ूबसूरत
0: ॾींहं हुआ, जंहिंमें किरदार खे सम्झण जो सुठे में सुठो चांस मौको ऐं किरदार खे कहिड़े नमूने निभाइजे उहो सुठे नमूने जो हिकिड़ो प्रिपरेशन थी वेंदी, छो जो ॿ ॾींहं लॻातार चार चार पंज पंज कलाक उन किरदार खे जीअंदासीं। चार चार रिहर्सलूं खाली रीडिंग जूं थींदी हुयूं, चार चार रिहर्सलूं रीडिंग जूं करण खां पोइ ॿिए ॾींहुं चार रिहर्सलूं करण खां पोइ जॾहिं टे ॾींहं रिकॉर्डिंग थींदी हुई त कॾहिं कॾहिं त छा थींदो हिकु माना टैक में सॼो कमु पहुची वेंदो।
1: जीअं मां तव्हां सां ॻाल्हि कई, हिकु श्रोता तरीक़े तव्हांजो जेको जुड़ाव रहियो आहे आकाशवाणी सां उहो कीअं रहियो आहे?
0: सुनीता जी, आशा मनशा रमाणी ऐं पुरसवाणी जी हिते खतनि जा जवाब ॾींदा हुआ, श्रोता तरफ़ां ख़त बि लिखिया वेंदा हुआ, अॻे तॾहिं मोबाइल त पहुचा न
1: थी,
0: ख़तनि जा जवाब जेको आकाशवाणी जो एपिसोड हलंदो हो त उहो ॾाढे माना सुठे नमूने में हिकु हिकु सवालनि जा जवाब या उन्हनि जूं फरमाइशूं, जीअं त संत कंवरराम

0: आकाशवाणी भगत जो इसम जो ढो सुठे नमूने निभाये वो हो ढो सुठे नमूने होंगे वो हमेशा याद इन तेखा सवाल ओभरू लहवार चिमन शर्मा उन साथी कलाकार हुआ ओभारू लहवार जैमें मुख्य जो किरदार सुठे नमूने माना निभाईंदा हुआ जैमें उतरे के माहौल की समाज के कुरीतू सुठाइन की भाई वह सारी खबर ओभारू लहवार प्रोग्राम में असें बुधन मिली वो ओभारू लहवार जैसे भी प्रोग्राम इन हो तो बुधंदड़ माना ढो चाह से उनके बुधंदा हुआ जी हिंदी में हवा महल हों सिंधी में ओभारू लहवार
1: अच्छा आकाशवाणी से जोड़न एक फखुर की असाज गाल उन बारे में तुम बुधाईंदा तो तड़ा एहसास इन जुड़ल
0: सुनीता जी आकाशवाणी से जुड़न माना समझो सरकार के कें वे उहदे के प्राप्त करने जितो है छो जो मुख्य याद है जैसे आकाशवाणी में असा चेक मिलो असेंट में भरने वेंदे तो उतर जहां जी भी मुलाजिम हूँ ये चेक ऐसी पुछंदा आप आकाशवाणी में क्या करते हो भाई आकाशवाणी का आर्टिस्ट हूँ अच्छा आकाशवाणी हमने कभी देखी नहीं है हमें बताओ हमें ले चलो अड़े नमूने जो सवाल जवाब मानून से थन्दा हा आज ही हिंसर 1974 मुझे स्कूल के ग्रुप से जैसे मुझे वार्तालाप थो तो उन्होंने गाल कई भी आकाशवाणी से ड्रामा डिपार्टमेंट में अप्रूव आया तो वह वायदा थी अस आकाशवाणी अजा तक दिठी कान का तू उन्हें एतर साल कम करी तो जिंदगी जो हि भी एक लाहौ आ हि भी एक किस्म जो अड़ो मंजर आ जिते चंगा भला मू तो पहुंची को कुदरत कई आर्टिस्ट या कलाकार जो ज्ञान हुनर बख्शिश थी हो ती अची तो सामान्य मू तो नो अची इतने अच्छा कुदरत जो करिश्मो ही है
1: बिल्कुल आकाशवाणी से जुड़ल रहने सच में एक नेमत ही है असाजे स्टूडियो में आया अवा जो जी आकाशवाणी से जुड़ल गाल यादगिरियन उन्डियं असाजे बुधंदर से वंडियं उन असं तवाजा तो रहता हूं
0: खूब खूब आभार
1: अज की पेशकश बस एतरी दोस्तों अवा खा इजाजत चाहूं था नमस्ते।

रातों की तहर।

Thank you.

पांचवे लोक संगीत कार्यक्रम अहित समाप्त करिए आप हसा आकाशवाणी भूज केन्द्र पर सांभी रहा था हमारा हवे पछीना कार्यक्रमों अमदावाद वडोदरा केन्द्र थी रिले कराशे।

सिंह चड्डा एफएम गीत हमें जो पसंद हो स्वर तो शिल्पा राव अरिजीत सिंह प्रीतम नो संगीत अमिताभ भट्टाचार्य शब्दों हम अपने संभाले राधेश्याम फिल्म गीत अरमान मलिक स्वर संगीत अरमान मलिक शब्द रश्मि दिरागना।

स्वतंत्र फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर कार्यक्रम में आगे संभाले मेट्रो इन दिनों आ फिल्म गीत राघव चैतन्य स्वर में अनुराग शर्मा शब्दों प्रीतम संगीत।

आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रस्तुत छे हिंदी गीतों कार्यक्रम। शुरुआत करिए अभिनय स्वामी ने स्वर्ण गवाया गीत साथ है।

0: श्रोताओं अर्पिता परवीन ने गवालिया वजन साथे ज वेर फिल्म हिंदी गीतों कार्यक्रम अहीं समाप्त थाय छे। आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणीनो अमदावाद वडोदरा राजकोट अने भूज केन्द्र। आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा राजकोट अने भूज रजू करीए छीए महिलाओ માટેનો વિશેષ કાર્યક્રમ સહેર।
1: આ વાર્તા છે એક નર્સ અને એના

0: हेलो कह देखा।
1: हेलो मिस्टर अग्रवाल, शुभ कब सब कर रहे थे फोन पर?
0: अरे मिसेस देसाई, तुम्हारा फोन तो
1: बाप रे कौन अमित ना होता।
0: हाँ तुम्हारा हस्बैंड ना फोन तो ना ना इन्हें गोपी से फोन ना कर सो एक काम ना थी
1: तो इन्हें फोन क्या दिया तो
0: क्या बाहर थी फोन कर रहे हो इन्हें ऑफिस से फोन कर रहे हो तो हमने खोल पड़ी कि तुम्हारे हस्बैंड संदेश हो तो इतने कम ने फोन करो पर हमें
1: वो क्या आपत करते हैं
0: कैम सुन बात से मिसेस देसाई कई मस्त से लागो छो वर्धन संदेश वाले कई खास काम से
1: सारे जीवन में श्राप और आशीर्वाद
0: तुम्हें उखाड़ पूछा नहीं रहो तुम छो
1: बात कह रहे हैं छे कि आज अमित नो जन्मदिवस छे पर शहरी जीवन नी दमल में जन्मदिवस नी शुभेच्छा आपको पण कितना चक्कर चलावा पड़े छे।
0: अरे मिस्टर देसाई ने आज आना नहीं क्यों एक तो कौन है एक तो आपको बुला गया
1: पर हमें शु करवो हमें बदन कर
0: अरे हाँ मिस्टर देसाई तो तुमने शादी मेरे अच्छे अरे तुम घनी बार जुड़े शादी कह रहे जाओ छो
1: भूल गया अग्रवाल आज सांजे बॉस से मीटिंग रखी छे नवा प्रोडक्ट की जाहिरात का प्लानिंग माटे अखा स्टाफ ने मीटिंग छे जो तो भूल जाता।
0: अरे हाँ खरेखर मन तो याद ही नहीं होता
1: पर मने एम थाय छे कि आपने वाली जाहिर खबर माटे ना मीटिंग में शू करवाना मोर थाय छो बीजो शू स्टाफ ने जेटली रीते दुखी करी सकाय ए रीते दुखी करवानो एक क्रूर आनंद बद्दा सेठ लोगों ने मानवा गमतो होय छे अने ए माटे ए सतत नवी योजना करता होय छे एक आज एक क्रूर आनंद बॉस से मळे એટલે માટે આપણે સ્વેચ્છાએ શિકાર થઈ જવાનું છે
0: અને ચાલો ચાલો ચાલો મન થઈ પૂરો થઈ ગયો ને કરેક્ટલા ડોળા આપણી તરફ પડશે એટલે આપણને બે શબ્દ કહેવાનો ક્રૂર આનંદ નહીં મળશે।

0: આકાશવાણી અમદાવાદ વડોદરા રાજકોટ અને ભુજ શ્રોતા મિત્રો સમય થવા આવ્યો છે બપોરના એક વાગ્યાનો થોડી ક્ષણમાં આપ સાંભળશો દિલ્હીથી પ્રસારિત હિન્દીમાં સમાચાર અને બરાબર એક વાગીને પાંચ મિનિટે સાંભળશો અંગ્રેજીમાં સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં કનકલતા. भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है. इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया. पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाया

0: व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान में निर्माणाधीन पुल के ढहने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल बचाव कार्य में लगे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 69 अंक गिरकर 75,799 पर था, जबकि निफ्टी 54 अंक की गिरावट के साथ 23,854 पर कारोबार कर रहा था। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वाल्सा विलियम्स। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted that delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants. Underlining that faster decisions are required in cases of personal liberty, a bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joymalia Baghchi said orders in bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said the order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. An India-bound oil tanker, Nissos Keros, has successfully crossed the Strait of Hormuz and is en route to Vishakhapatnam with an expected arrival on the 3rd of next month. The Marshall Islands-flagged vessel departed from Sharjah on the 21st of this month and was tracked in the northern Arabian Sea off India's west coast this morning. Iran's news agency reported that the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy had facilitated the passage of 23 commercial vessels through the strait in 24 hours amid ongoing tensions over proposed transit fees by Tehran. Iran has proposed regulating maritime traffic via a new authority, while the United Nations maintains that imposing transit fees in international waters is illegal. The United States has called for free navigation through the strategic waterway. Karnataka Governor Thawar Chand Gehlot has accepted the resignation of Chief Minister Siddaramaiah in Bengaluru today and dissolved the Council of Ministers with immediate effect. However, he has been asked to continue in office as caretaker Chief Minister until alternative arrangements are made, asking him not to take any executive

जय भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सहेली अनुजा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के जय भारती कार्यक्रम में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो सिर्फ गीत नहीं बल्कि एक एहसास है। ऐसे गीत जिनमें कभी बारिश की भीनी खुशबू है, कभी प्रेम की मासूमियत, तो कहीं यादों की हल्की सी कसक। पुराने गीतों की एक अलग ही बात होती है दोस्तों, इनमें शोर नहीं होता लेकिन असर बहुत गहरा होता है। कुछ सुर पुराने होकर भी नए लगते हैं, कुछ लोग दूर होकर भी पास लगते हैं। तो आइए रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ पल निकालकर सुरों और यादों की इस खूबसूरत यात्रा पर हमारे साथ चलें। शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसे सुनते ही सावन जैसे मन में उतर आता है। लता मंगेशकर की मधुर आवाज में सलिल चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ परख फिल्म का ये गीत सुनिए, वो लिखे हैं शैलेंद्र ने।

बारिश की उस मधुर फुहार के बाद अब चलते हैं प्रेम और भक्ति के उस संसार में जहां कान्हा की बांसुरी की धुन हर दिल को अपने साथ बहा ले जाती है। भारतीय संगीत में राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति माना जाता है और जब इन भावनाओं को सुरों में पिराया जाए तो एक अलग ही जादू पैदा होता है। आइए सुने बेटा बेटी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया और शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत।

0: कितना खूबसूरत होता है वो रिश्ता जहां बातें कम हो लेकिन एहसास गहरे हो। कभी सिर्फ किसी का यूं ही मिलता रहना भी दिल की धड़कनों का मानो हिस्सा बन जाता है। और 60 के दशक के रोमांटिक गीतों में एक अलग ही नजाकत और सादगी थी और अगला गीत उसी दौर की मीठी पहचान है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया हुआ राजा मेहदी अली खान का लिखा गया ये गीत फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार हो जाए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो कौन थी इस फिल्म का गीत, मदन मोहन का संगीत और राजा मेहदी अली खान के शब्दों के साथ।

कुछ गीतों में ऐसा जादू होता है कि ऐसा लगता है जैसे कोई सपना धीरे धीरे आंखों के सामने उतर आया हो। आवाज में ठहरा हुआ एक सपना लगा, आवाज में ठहरा हुआ एक सपना लगा, ये गीत आज फिर कुछ अपना लगा। और अब जय भारती कार्यक्रम के इस खूबसूरत मोड़ पर एक ऐसी पुकार जो समय की सीमाओं को भी पार कर जाए। फिल्म मधुमती का ये गीत आज भी सुनने वालों को किसी सपने की दुनिया में ले जाता है। सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र का लिखा और सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ मधुमती फिल्म का ये गीत।

जय भारती कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्रों से। आज आपको सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो सीधे दिल को छू जाते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में कोहिनूर फिल्म का गीत, जिसे संगीत दिया है नौशाद ने और लिखा है शकील बदायूनी ने।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें इस फिल्म का गीत, एसटी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के बोल के साथ।

आइए आपको सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, एसटी बर्मन का संगीत और बोल है मजरूह सुल्तानपुरी के।

0: दोस्तों, हमारे पुराने गीतों में मिट्टी की खुशबू भी होती थी और लोक संगीत की सादगी भी। कुछ धुनें ऐसी थी जिन्हें सुनते गांव की गलियां, मेले और भले भले लोग आंखों के सामने उतर आते हैं। सादगी में भी एक अलग ही नूर होता है, पुराने गीतों का अपना ही सुरूर होता है। दिलीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये चुलबुला गीत आज भी अपनी देसी मिठास के लिए सबको याद है। गंगा जमुना फिल्म से ये गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में, नौशाद का संगीत और बोल है शकील बदायूनी के।
1: गोरी गुजरिया से

the pay, pay, pay, jack, then at the penny jack, then at the penny jack, then at the penny jack, then at the penny jack.आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचने लगी है।

तो दोस्तों, सुरों और यादों से सजी आज की जय भारती कार्यक्रम की ये महफिल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इन सदाबहार गीतों ने आपके दिल को भी उसी तरह छुआ होगा जैसे बरसों से ये गीत हमारे दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। कुछ नगमे वक्त के साथ पुराने नहीं होते और शायद इसलिए दिल उनसे कभी दूर नहीं होते। और पुराने गीतों की यही खूबसूरती है, समय बदल जाता है लेकिन इनकी मिठास कभी कम नहीं होती। हर बार सुनने पर ये हमें किसी नई याद या नए एहसास से जोड़ देते हैं। दोस्तों, आज के जय भारती कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है हमारी आपसे विदा लेने का। जल्द ही मिलेंगे जय भारती कार्यक्रम में फिर से एक बार। तो आज के लिए आपकी रेडियो सहेली अनुजा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी का अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र।

0: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भुज। दो बजकर 15 मिनट होने को है दोस्तों, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे गुजराती में प्रादेशिक समाचार। जुड़े रहिए आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट और भुज केंद्र के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारे प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्प्रिंटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
4: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है

0: रूपया की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीईपीए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबाली क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के

0: वर्तमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जब घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीमेट की घोषणा किया है, रीमेट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि विद्यार्थियों के विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार ने कहा है कि

0: में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत मिसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर एक तक सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी समझौते के प्रति वचनबद्धता दोहराई। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 192 अंक गिरकर 74,776 पर बंद हुआ। निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,548 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला करेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today directed all high courts across the country to pronounce judgments within 3 months of reserving them. The Apex Court also noted the delays in the delivery of judgments can cause irreparable harm to litigants, emphasizing that faster decisions are required in cases of personal liberty. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bhatji said that orders and bail applications should be pronounced the same day, and if they are reserved, they must be pronounced and uploaded the next day. Issuing a slew of directions, the top court said that order of bail or sentence suspension should be communicated to the jail authorities as soon as it is pronounced, and the under trial convict should be released preferably the same day or at most the next day. The Supreme Court today stressed accountability for the lapses in the NEET paper leak case. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Arade was hearing pleas on the matter, including one seeking a direction to replace or restructure the National Testing Agency, NTA, with a robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. The bench asked the Centre to file an affidavit and posted the matter for hearing in the second week of July. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with Daily News, Mr. Pradhan assured that the re-examination

0: नमस्ते, ये आकाशवाणी है। हाँ, तो मैं तो खूब चंदा ने था देश और विदेश के समाचार बदलना सुबह का पहले मुख्य समाचार है। सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्टों के फैसला महफूज रखा जी तीन महीनों के अंदर गुदान जी हिदायत देनी आई। पहले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इम्तियाज माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई में काबिल शागिर्दन जी मुफादन जी हिफाजत करने जी दिल जी देने पीएम सूर्योदय योजना अहम हासिला पे हासिल गई। इन्हें जी तहत 40 लाख घरों जी छतों पे सोलर पैनल लगाना पड़ा। आधा हवाना एक में जून में सभी मुल्क में आम रिवाज रखा वित्त बरसात जी अवगत गई। आईपीएल क्रिकेट में अभी वे क्वालिफाई मुकाबले में गुजरात टाइटंस के मुकाबले राजस्थान रॉयल्स से। सारे समाचार तफसील में बदलना। सुप्रीम कोर्ट अरे मुल्क के सभी हाईकोर्टों के फैसलों महफूज रखा जी तीन महीने के अंदर उनके बयान कराने की हिदायत दी है। अदालत चाहो तो फैसले में देर सबब अर्जदारों के भरपाई न थी सकेगा नुकसान थी सके तो। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: तैलीम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चाहो तो पेपर लीक थे जो वाक्य इंतहा बदकिस्मती जो वो हो। डीडी न्यूज सा एक खास इंटरव्यू में श्री प्रधान ने यकीन दिलाया तो बिहार इम्तहान जो अमल मुनासिब तरीके से बिना के गलतियों के मुकम्मल कर वेंदो।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने भी नीट की घोषणा किया है और ये नीट सुव्यवस्थित हो जाए इसमें निर्भयता के साथ हो ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: शागिर्दन की किताब कमरे श्री प्रधान उन्होंने यकीन दिलाया सरकार उन्होंने चिंताओं के समझ सके थे। उन्हें साहिबा इन गाल के स्वीकार कर शादी गंजे विश्वास के ठोकर लगे थे। श्री प्रधान ने यकीन दिलाया तो इम्तहान के अमल से लगा पहले चिंताओं के विच में बिना कई गलतियों के इम्तहान के मुंतजिम करने लाए मुमकिन कोशिशों कई पन बना। श्री प्रधान ने चाहे तो
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है

और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92%।

0: लीजिए, सासू जी आ रही हैं। सास और बहू का टकराव किस घर में नहीं होता, लेकिन हमारा घर, हे भगवान, दोनों को समझाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब तो ये बोतली है।
1: हे भगवान, तुमने ये कौन से जन्म की सजा दी है जो ये मुसीबत हमारे खानदान में आ गई।
0: ये कौन सी मुसीबत?
1: अरे अब मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट में लिख के दूं कि कौन सी मुसीबत। अजी वही मुसीबत जिसे बड़े चाव से बहू बनाकर ट्रॉली में डालकर इस घर में लाए थे।
0: क्यों, अब क्या हुआ?
1: अजी वही जो रोज होता है। मैंने जरा सा डांट डपट दिया तो आगे से पूछती है, क्या हुआ माता जी, क्यों नाराज हो रही है? मैंने क्या किया?
0: अगर तुम नाराज हो रही थी तो बताने में क्या?
1: अजी तुम्हें तो उसे सब पे चढ़ा रखा है। अजी हमारा भी जमाना था, तुम्हारी माँ मेरे बाल नोच कर मेरे हाथ में पकड़ा देती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की कि सासू जी क्यों बाल नोचे आपने, याद है ना तुम्हें?
0: हाँ याद है। अरे तुम्हारे हाथों में बालों का गुच्छा होता था। और ये भी याद है कि मैंने एक दो बार वो बाल देखे तो पता चला कि वो बाल तुम्हारे नहीं मेरी माता जी के थे।
1: अरे वो तो मेरी शादी के एक हफ्ते बाद ही मैं और तुम्हारी माता जी आपस में इतनी घुल मिल गई थी कि सासू जी के बाल मेरे हाथ में और मेरे बाल सासू जी के हाथ में पहचानना मुश्किल हो
0: गया। माँ कितना भाग्यशाली हूँ जिसे तुम्हारी जैसी पत्नी मिल गई। लेकिन अब ये तो बताओ कि बहू ने जो पूछा था कि क्यों डांट रही हो तो तुमने क्या जवाब दिया?
1: जी मैं पूछती हूँ, सास को क्या हर बार बताना पड़ेगा कि उसने बहू को क्यों डांटा? अरे ये तो सास का मूड है, मन किया तो डांट दिया, लेकिन बहू कौन होती है सास से पूछने वाली है? छह महीने हो गए इस बहू को हमारे घर आए हुए, इसने तो सवाल जवाब कर करके मेरा नाक में दम कर दिया। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ले भगवान।
0: इस बहू को ठीक करना है तो सास वाला वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपनाओ, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा।
1: क्या, यानी कि मैं बहू को जला दूं?
0: अरे धीरे धीरे बोल, सुनना ले। यही तो एक तरीका है जो इस देश की कई सासें अपना रही है और बहू से छुटकारा पा रही है।
1: हरीश के डैडी, मैं सद के जाऊँ तुम पर, तुम्हारे मुंह में घी चक्कर, ये तो तुमने मेरे मन की बात कह दी।
0: तो फिर सोच क्या रही है, ये काम में देर किस बात की? अरे उठ, मट्टी के तेल की बोतल यानी कि सास का आजमाया हुआ हथियार उठाओ और बहू को हल्ला बोल दो।
1: नहीं, मुझे तो डर लग रहा है, हिम्मत नहीं पड़ रही, पुलिस केस बन जाएगा जी, पकड़ी जाऊंगी, माफी हो जाएगी।
0: इसका मतलब है हरीश की मम्मी तुम्हें उस नए कैनिशन के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता जो मार्केट में आया है? ये देखो।
1: क्या बहू को जलाने के लिए स्पेशल केरोसिन है? क्या मतलब?
0: अरे यही वो केरोसिन है जो सास छुपकर पीछे से बहू पर उस वक्त छिड़क देती है जब बहू अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। उस वक्त बहू को ये नहीं पता चलता कि उस पर किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा, तो फिर ये बताओ माचिस कब जलानी पड़ेगी?
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा सिस्टम
1: ऑटोमेटिक।
0: केरोसिन छिड़कने के कुछ घंटे के बाद पहले बहू को चक्कर आएंगे और फिर 24 घंटे के बाद वो अपने आप जल जाएगी।
1: अपने आप जल जाएगी? अरे हरीश के रेडी, फिर तो मैं एक दो घंटे पहले ही भागकर मंदिर चली जाऊंगी। मैं उधर मंदिर में आरती उतार रही होंगी और मेरी बहू घर में चल रही होगी।
0: अरे ठहरो तो सही, हरीश की तो सुनती जाओ। हर एक को पता है कि तुम दोनों सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हो, ये तो सभी को पता है। जब बहू जलेगी तो पुलिस को सबसे पहले तुम पर ही शक हो जाएगा। अरे इसीलिए ये केरोसिन छिड़कने के बाद तुम बहू से प्यार करना शुरू कर दो, दिन में प्यार, दोपहर को प्यार, रात को प्यार, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि तुम बहू से नफरत नहीं उससे प्यार करती हो। जब बहू जलेगी किसी का तुम पर शक ही नहीं
1: जाएगा।
0: अरे लो, अब बहू जी आ रही है।
1: पिताजी
0: क्यों बहू, अब क्या हुआ?
1: क्या नहीं हुआ, जैसे हर रोज होता है आपको नहीं मालूम?
0: अरे बेटी रोती ही जाएगी या कुछ बताएगी भी?
1: आज फिर माता जी ने मुझे बिना बात के डांटना फिटकरना शुरू कर दिया। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है माता जी, क्या नाराज हो रही हो, तो कहने लगी सत्यानाश हो तेरा, बहू होकर तुम्हारी ये मत, ये मजाक, मुझसे पूछती क्या बात है? अब आ भी बताइए मैं क्या करूँ, आप भी तो कुछ नहीं करते।
0: मैं क्या करूँ बेटा, तुम तो उससे 6 महीने नहीं परेशान हो गई हो, मेरी हालत देख, 25 साल से उसे झेल रहा हूँ, ये ढोल ऐसा गले में पड़ा है कि उतरता ही नहीं, और मैं तो खैर एक बेबस और बदकिस्मत पति, लेकिन तुम एक बहू होकर सास को ठिकाने नहीं लगा सकती।
1: लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ?
0: अरे बेटी तुम ही तो हो जो इस घर में कुछ कर सकती हो।
1: आपका मतलब है?
0: अरे ठीक समझ रही हो, बिल्कुल ठीक समझ रही हो।
1: ये कैसे हो सकता है जी, एक सास तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सास को कैसे जला सकती?
0: क्यों नहीं जला सकती, वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है।
1: पिताजी जैसे घोड़े पर बैठकर दूल्हा आता है दुल्हन नहीं आती, जैसे दुल्हन डोली में बैठकर ससुराल जाती है दूल्हा नहीं, उसी तरह एक सास तो बहू को जला सकती है लेकिन बहू सास को नहीं जला।
0: लेकिन ये रिवाज बदलना होगा।
1: नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे फांसी हो जाएगी।
0: इसका मतलब है बहू तुम्हें उस केरोसिन के बारे में अभी तक नहीं पता चला जो मार्केट में आ गया, ये देखो।
1: सास को चलाने के लिए स्पेशल केरोसिन है? क्या मतलब?
0: ये वो केरोसिन है जो बहू छुपकर पीछे से सास पर उस वक्त छिड़कती है जब सास अपने ध्यान में कोई काम कर रही होती है। अच्छा। उस वक्त सास को ये नहीं पता चलेगा कि किसी ने कुछ छिड़का है।
1: अच्छा।
0: माचिस जलाने की कोई जरूरत नहीं, यही तो खूबी है इस केरोसिन में, सारा काम ऑटोमेटिक, पहले कुछ घंटे बाद सास के घुटने कांपने लगेंगे, उसके बाद जब केरोसिन छिड़के हुए 24 घंटे हो जाएंगे तो सास अपने आप जल जाएगी।
1: अच्छा, माय गॉड, फिर तो मैं अपने फ्रेंड्स के घर किसी पार्टी रखा देती हूँ, मैं एक घंटा पहले ही भागकर फ्रेंड्स के घर चली जाऊंगी और जिस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी अटेंड कर रही होंगी उस वक्त पूछगी सासू जी घर में जल रही होंगी।
0: अरे ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, हर एक को पता है कि इस घर में सास और बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं।
1: ये तो सभी को पता है।
0: जिस वक्त तुम्हारी सास जलेगी पुलिस को सबसे पहले शक तुम पर जाएगा।
1: ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
0: इसलिए केरोसिन छिड़कने के बाद जब तक तुम्हारी सास जल नहीं जाती उससे प्यार करना शुरू कर दो। सवेरे प्यार, दोपहर को प्यार, शाम को प्यार,
1: प्यार कभी नहीं। और लोग क्या कहेंगे कि एक बहू होकर सास से प्यार करती है?
0: समझा भी करो बहू, असली प्यार नहीं, ऊपर ऊपर का प्यार, दिखावे का प्यार, अरे सिर्फ एक दिन का प्यार।
1: अच्छा ठीक है पिताजी। राधे श्याम राधे श्याम सीताराम। तो यहाँ बैठी है सासू जी, जी चाहता है इसे मलाई में संख्या मिलाकर खिला दूँ।
2: राधे श्याम। बहू, ओ मेरी प्यारी बहू रानी,
1: आई माता जी। जी माता जी।
2: बहू कहाँ थे तुम?
1: मैं यही तो थी माता जी।
2: बेटी तुम्हें थोड़ी देर भी नहीं देखती हूँ तो दिल घबराने लगता है।
1: अब यही हाल मेरा भी है माता जी, जी चाहता है अब हर वक्त मेरे सामने ही खड़े रहे, मैं आपको निहारती रहूँ।
2: बहू तू ठीक तो है ना?
1: जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माता जी।
0: अभी इसको केरोसिन का असर नहीं हुआ क्या?
1: इसे अभी चक्कर नहीं आया क्या? क्या कहा माता जी?
2: कुछ नहीं बेटी कुछ नहीं,
1: बैठा चक्कर मुझे चक्कर क्यों आएंगे?
2: आएंगे बेटी आएंगे, जरूर आएंगे,
1: मेरी बहू को चक्कर जरूर आएंगे, मेरी बहू को नहीं आएंगे तो और किसे आएंगे?
2: 6 महीने हो गए शादी को,
1: 6 महीने शादी को हो गए तो क्यों होगा माता जी? चलिए छोड़िए माता जी, आप बताइए ना, आप तो ठीक है ना?
2: मैं
1: मुझे क्या हुआ? आपके घुटने तो नहीं कांप रहे?
2: मेरे घुटने? घुटने क्यों कांपेंगे?
1: कांपेंगे माता जी, जरूर कांपेंगे। अब वो आपकी उम्र हो गई है, लाइए माता जी मैं आपके घुटने।
2: नहीं नहीं उम्र नहीं बोल रही,
1: लाइए ना माता जी लाइए।
2: अच्छा हाँ रानी, तुमने आज पहली बार मेरे घुटने दबाए हैं, बहुत आराम मिल रहा है बहू।
1: मैं बस चली तो फुसू की बजाय इसके कदम दबा दो।
2: क्या कहा बेटी?
1: पिछले माता जी जल्दी दबा रही हूँ।
2: भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे,
1: मैं इसे जी दूंगी पकना। माता जी आपने कुछ कहा?
2: नहीं नहीं बेटी मैंने तो कुछ नहीं कहा।
1: बहू आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ।
2: कथा? जब कोई प्राणी इस संसार से जाने लगता है तो उसके कानों में कथा की आवाज सुनाई देनी चाहिए।
3: आप क्या कह रही हैं माता जी? इस पुलिया को कहीं पता तो नहीं चल गया किसकी घंटी बजने वाली
2: है? क्या कहा बाबू तुमने कुछ?
3: मैं कह रही थी माता जी, चाहे आप बूढ़ी हो गई है फिर भी आप अच्छी बनी है, हड्डी पक्की। आखिरी वक्त आए आपके दुश्मन।
2: तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, आखिरी वक्त आए मेरे दुश्मनों का।
3: बहू जी
2: बात बताओ जी, तुम तो फिल्में देखती हो ना? अच्छा ये बताओ, हीरो और हीरोइन को कैसे पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है?
3: जब उनका दिल धक धक करने लगता है तो उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्यार हो गया है। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते,
2: हाथ पकड़ लेती है।
3: हाय,
2: मेरा दिल भी तो धक धक कर रहा है।
3: माता जी, मेरा भी।
2: बहू, मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है जरा, न जाने क्यों मुझे ये सोने का हार तुम्हें देने को मेरा मन उतावला हो रहा है।
3: माता जी
2: ये लो बहू, पहनो इसे। हाय, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू।
3: ये क्या किया आपने माता जी? ये हार आपने मुझे दे दिया? इतना कीमती हार बहू को दे दिया?
2: मुझे खुद पता नहीं बेटी मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है? लगता है शायद
3: शायद माता जी
2: शायद शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। बहू
3: ये क्या हो गया है आपको? एक सांस होकर बहू से प्यार करने लगी है?
2: हाँ बहू, नाना करके प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
3: माता जी मुझे भी पता जा रहा है,
2: क्या हो रहा है बेटी?
3: लगता है शायद मैं भी आपसे प्यार करने लगी।
2: अच्छा आओ बेटी मेरे गले लग जाओ। बेटी मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें चलाने के लिए तुम पर केरोसिन छिड़क दिया है। बहू मुझे भी माफ कर दीजिए माता जी, मैंने भी आपको धोखा दिया है, मैंने भी आपको चलाने के लिए आप पर केरोसिन छिड़क दिया है। यानी कि तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हें भी केरोसिन दिया है। माता जी हम दोनों को बर्बाद करने पर चले हुए हैं, मैं तुम्हें चला नहीं दूंगी। मैंने धोखा देने पर भी आपने मैंने फोन कर दिया है उन लोगों को बेटी। अब हमें इस दुनिया में कोई कागज जीवा नहीं कर सकते, हम जिएंगे तो एक बार, हम मरेंगे तो एक बार। दुनिया के साथ एक हो जाओ, अपनी बुआ को गले से लगाओ। दुनिया की बुआ एक हो जाओ, अपनी सासू जी से प्यार बढ़ाओ और अपने ससुर जी से खबरदार हो जाओ।
0: बताइए बताइए कौन बीमार है?
2: मेरे घुटने कांप रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है बेटी?
3: मुझे भी चक्कर आ रही है,
2: मैं भी आपके पीछे पीछे आ रही हूँ।
0: आपको क्या पता?
2: मेरी बहू को बताइए, सासू जी को
0: क्या हो रहा है? ये बताइए
2: मेरा ख्याल लीजिए। माता जी का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। मैंने इन्हें जलाने की कोई नहीं है, ऐसे जलाने की कोशिश की है।
0: इंस्पेक्टर साहब, किसी ने किसी को नहीं जलाया। हाँ, इन बोतलों में केरोसिन नहीं, गुलाब जल है। गुलाब जल? सारे घर में प्यार की वर्षा हो रही है, सास और

ये थी झलकी एक दिन का प्यार। इसके लेखक वी एम आनंद, निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे।

की तरह कार्यक्रम में मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं केके के गाए इस गाने के साथ। इसे मिली है फिल्म राज 2 से। गीत संजय वासुम का है, संगीत अजीत गांगुली का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की धूम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अब सुनते हैं एनएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी फिल्म का गाना पलक मुछाल की आवाज में। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत अमाल मलिक का है।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना गीत।

आइए अब सुनते हैं फिल्म ब्रेक के बाद का ये गाना, मोनिका डोगरा विशाल दादलानी की आवाज में, गीत प्रसून जोशी ने लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनीषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तरह बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने किया कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वही बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाए। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करे। NABL प्रमाणित लैब वहाँ कुछ राज्यों में हो, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यून मिन आंग ह्लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायक बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: विकसित भारत की तैयारी ये है अपना प्रयास।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारे ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारा प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा

तैयार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने

छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकीय बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 91 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्लास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री

शिक्षण, प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वामी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार ने, गीत अमित खन्ना का है, संगीत राजेश रोशन का।

0: ये किसी सिनेमा तो नहीं थी, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ। रात से खाओ
1: जाने वाले चरित्र अभिनेता जीवन
0: सरे दरबार खिदमत में हर एक मांगे का रोगा किसी के हाथ में पंजाब तो एक चीन होगा। बाबा बाबा बाबा की आवाज बुलंद होगी, डायरेक्टर साहब ने मुझे बने सके डाल दिया। मैंने कहा बरखुरदार, अरे तुम तो बार आर्टिस्ट हो, फिल्म में

दोस्तों ये गाना फिल्म जलवा का है जिसमें पंकज कपूर ने एल्बर्ट पंचो की भूमिका निभाई थी। जय हो।

सब इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने नहीं पता किया, सब इंस्टीट्यूट में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्ट कर लिया था। और उस तरह से मेरी तालीम वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी जी यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे

थी वो मैंने की थी उस वक्त, तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में अपडेट करूंगा उसको, सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था, पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का।

खुद को में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई है। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: दुनिया में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हैं अपने किरदार।

0: गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुना रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रामे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मेरी बोली नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे अवधि का किरदार था जो

वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की. तो ये कुछ रोल है जिनको पढ़ने में मिला. 1991 में तपन सहगल की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी

दरअसल में फिल्म ओरिजिनल धीरेन अंकुरी साहब ने किया था, रंजा बाबू का दिया था, लेकिन बाद में तमीजा का रोल कर रहे थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उन्होंने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल लोगो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं था, मुझे भी अभिनय करना था, तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में बैठ रहे हैं, और उस बड़ी खतरनाक फिल्म की लिफ्ट थी जो एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी, और शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें महीने पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब को देखे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लग के ऊपर चले चलते हैं, और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर रहे होगी लैंडिंग पर, वहां से आप उतर के फिर नीचे 10 लोगों तक चले जाने वाला, तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद।

तुम क्या फिर लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक जाने को चाहिए तब भी लिफ्ट टूट जाती है और सब लोग मर जाते हैं। तो ये एक हादसा फिल्म महारो को लिया था जो जिंदगी बन गया। 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक है ऑफिस ऑफिस, जबान सहार के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास पीएलएलबी, वाह भाई वाह, साहब जी बेबी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होली की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी। आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 पे रिलीज हुई थी फिल्म। 10 आप जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू

दर्शक फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मेट्रो के बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

प्रोग्राम आज के फनकार पंडित जानवर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश पोखरे ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सुबह 6 गीत का अच्छी तरह के इंतजार।

की ईद के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल

जाते हैं, शब्द उड़ जाते हैं, जुबान रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम्हें बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की ये दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, कि रास्ते मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं और ये भी जरूरी नहीं कि हर पार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती हैं और तब तब दिल क्या उड़ता है कोई प्यार।

किए पाते आप सुन रहे थे छायांकित के सफर में अपने हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत।

0: सुनते हैं साझा कर रही है अपने पिता हरी प्रदीप के जीवन से जुड़े कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रूपाली सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसंख्यिकी सुरक्षा

0: सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ब्रिज स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बार सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ब्रिज के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण

मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूजरूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। वही चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य लिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तो गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।